0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

न्यायन उत्पादन वृद्धि बदेल बालयो पारखाबा आर्थिक वर्ष न्यायन उत्पादन रे प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि मई बिनी बर्दिनु बर्फेना टासी लमजुङहरी नगाइन स्याब बिक्री घट्दिएन जिल्ला विषा संक्रमण जोखिम आरे प्रदूषण नियन्त्रण लागि बेस सरल वातावरण मैत्री कोइन झोला चुइनु दे सैसुना बदलीकरण लगाई लागि शेषु खुदी बजारीकरण लगाई लगी दोडी नाश पालिक जीत पैकिंग लगा सामान्य चुईम गण्डकी प्रदेश सरकारले तरिबा आर्थिक वर्ष ऐन तुलना रिङ या उत्पादन लगाई लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि मै बढ़िम तरिबा आर्थिक वर्ष रे लमजुङाई लागि मात्र हो 35 लाख रूपियाँ मई विनियोजन लगभग प्रदेश सरकारले तारखाप वर्ष लागि 50 लाख रूपियाँ पुरेम प्रदेश सरकारले उत्पादनले आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम नोरे यहाँ उत्पादन आधारले अनुदान पिबा लिसो कृषकमय व्यावसायिक यहाँ उत्पादन रे आकर्षित तैब तुलनात्मक रूपले जिनले महिना यहाँ उत्पादन बर्दिसी याबा कार्यालय प्रमुख डाक्टर न्यूपानेश्री बीमो कार्यक्रम प्रभावकारिता दे ध्यान दे थिमरी सरकार जी व्यवसाय कृषक महिना प्रोत्साहन लागि मई बर्दिनी म जिल्ला रे याबा वर्ष ऐना तुलना रे व्यवसाय यहाँ उत्पादन लगा बर्दिसी ये म जिल्ला रे यहाँ उत्पादन के बाल सुनवा समेत वृद्धि तदस्य याबत जिल्ला भेटनरी अस्पताल पशु सेवा कार्यालय लमजुङ जी बी म देशभरि विभिन्न खोरी बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि अवधि बालयो समाचार सार्वजनिक तरिका बेरारी लमजुङारी भिनी नगइन स्याइन बिक्रेरी लेयो कमी खाइमो विशेष लैमरी नेपाल टेलिकम मोबाइल रिङटोन त क्यायो बर्ड फ्लू सम्बन्धी सतर्कता सन्देश प्रसारण लिसु उपभोक्तामै फाइ वा व्यवसायमै जी बिम नगइ स्या दिएर व्यवसायलाई खबा व्यवसाय महिना अनुसार सुबै दिनारी उपभोक्तामै जे नगइन स्या किबा रि फाइ वा तैमरी स्याकी मै घटेसी याबा बिमो व्यवसायमय अनुसार बजारहरी माग घटेसी याबा बिमो भेटनेरी अस्पताल र पशु सेवा कार्यालय लमजुङै अनुसार जिल्ला नगर नगइन उत्पादन आधारित मो विषा स्याइन प्रयोगका लागि जिल्ला बाहिरदेखि नगर कम पोखोबा लबा बिमो चुर विषा भेटनेरी अस्पताल र पशु सेवा कार्यालय जी जिल्लाधी तोखोसम्म बर्ड फ्लू संक्रमण आतपदे जोखिम आम्रोबा बीएमओ कार्यालय अनुसार जिल्लाधी नियमित अनुगमन दिएर निगरानी तरिपादे तोखोसम्म खेबेबिनी नमूना बिनी संक्रमण आथोबा भेटनेरी अस्पताल दिएर पशु सेवा कार्यालय लमजुङ प्रमुख डाक्टर न्यौपानेजी बीएमओ प्लास्टिक दगे प्रदूषण न्यूनीकरण लगा उद्देश्य जी बेसर वातावरण मैत्री कोइना छोला चुभ अभियान शुरू लई म डिविजन वन कार्यालय लमजुङजी प्रदूषण नियन्त्रण लबै लागि प्लास्टिक झोलाइन विकल्प रि वातावरण मैत्री कोइना झोला चुई म मंगलबार बेसर नगरपालिका सहसहजी क्षेत्री नासेथिमेती क्रिमिरे क्रि झोला नदराजी एक से थान झोला चुभा डिभिजन वन कार्यालय सूचना अधिकारी वन अधिकृत सन्तोष खनालजी बी म ठेना अनुसार प्लास्टिक झोला प्रयोग न्यूनीकरण लसी वातावरण संरक्षण टेवा पूर्वा उद्देश्य जी प्रदेश सरकारले न सहयोगी प्रदूषण दिएर फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यक्रम नोरे कोइन झोला चुबा बिमो लमजुङहरूबै दोर्दी नासापालिका जी नासाथेमे जी उत्पादन लभ बजारीकरण दिएर ब्रान्डिङ प्रवर्धन लभ उद्देश्य जी सैसु नभा समूहादे सैसु खुदु प्याकिङ लगा सामानमै हस्तान्तरणलाई म चलिबा आर्थिक वर्षरी नासापालिका वडा नम्बर 9 हिले टक्सार मुभा लाकुरी बोट पोखरी मौरी पालन समूह आदि र मिलिजुली मौरी पालन समूह आदि 1 केजी क्षमतापै 1500 वटा मह प्याकिङ लगा भाँडा पिबा बिमो नासाथेमे उत्पादन दे महदे गुणस्तरीय प्याकिङ दक्या बजार र प्रतिस्पर्धा पनि बा दोर्दी अर्गानिक महिन पहिचान स्थापित लाभ मौरी पालन व्यवसाय दिएर व्यवसायिक दिएर आयामूलक बनेबो उद्देश्यजी छु सामान मेचुबा नासापालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीजी बिमो
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एका नोर्वे इलाका संरक्षण कार्यालय बुचुङजी आफैना कार्यक्षेत्रले युवा च्याउन विविध पहिचान तथ्याङ्क संकलन दिएर अभिलेखीकरण के छिम सर्वेक्षण सिउरुङ खिलापो कोप्रे कोप्रोङ थुर्चु दुधपोखरी थुर्चुङ फुर्चुङ डोमा छोरोङ्गो बुजुङ दिएर बुजुङ रहुपस्काउँ कमनास क्षेत्रधी सर्वेक्षण लभ कार्यालय प्रमुख पदमा प्रमोद राज खेगमीजी बिमो सर्वेक्षण अन्य क्रमले विभिन्न प्रजाति बेचिएन अवस्था फैलावार वासस्थान दिएर जैविक विविधता सम्बन्धी विभिन्न विवरण संकलन लैमरी अभिलेखीकरण लभ कार्यालय बिमो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईना ग्रेड वृद्धि अर्थात पूरक परीक्षा नतिजा सार्वजनिकलाई बोर्डैन अनुसार ग्रेड वृद्धि परीक्षा लागि 129,194 जना विद्यार्थी सहभागी मुभरी 83,523 जना उत्तीर्णता बीम जो सहभागी 64.69% हो जीपीए अनुसार ताई भन्दले 51,438 विद्यार्थी से 2.40 देखि 2.8 प्रयोग बोर्डी नतीजा वेबसाइट दिएर एमएमएस लगायत विषयवतक्या चोलियोबा बीम मर्सिङ फेटी तोखुबे लागे छ गयौं फेटी छु भन्दा उइसो क्रफे फेटी फेरि देखे।

लमजुङ दिन यहाँ उत्पादन बढ़ी बढ़ी बालौ तारखा आर्थिक वर्ष लगी मुईबिनी बढ़ी म बर्ड फ्लू क्या फांगी बा लमजुंगे लमजुंगारी नगैन स्याब बिग्रेरी घटिए मु जिल्लारी विशेष संक्रमण जोखिम आम्रुइमु प्रदूषण नियन्त्रण लबै लागि विस्तारहरी बाथरण मैत्री कोइना छोला चुइमु दे सही सुख दुईन बजारीकरण लबै लागि दुर्दी नासा पालिका चाहिँ प्याकेजिङ लबा सामान मै चुइमु खबर तमुके मर्सङ्गी फेते तोखो बेलागी छिजी प्राविधिक थियो दिपेशले धन्यवाद तिमारी फेते कचिक खुसीमाया तमु सुविधा किमो रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजीव
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिडीज़ एफएम 95 मेगाहर्ट्ज़

0: পরিচয় ঘটনাকে স্টেট ভয়াবহ প্রতিনিধি সভার কাছে চিত্রকাশ অধিকারীদের জানকারী দিল হয়।
1: यस वर्ष एल निनो प्रभावका कारण मनसुनमा वर्षा कम हुने अनुमान छ तर यही बीचका हप्तामा अत्यधिक वर्षा भई आकस्मिक बाढी बढेर घटना पर्न सके भन्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तान र भारतमा विनाशकारी बाढी जारी रहेकै बेला विज्ञहरूले लामो सुखा

0: प्रशिक्षण परामर्श तथा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भइरहेको छ।
1: विशेषज्ञ सेवाहरू, निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक द्वारा उपचार, चार सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सुविधा, दैनिक ओपिडी तथा शल्यक्रिया सेवा,
0: रोग लुकाएर नराखौ, समयमै परीक्षण गरौ।
1: जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-6696, 41106696। स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेद अपनाऊ।

0: सेजी बिला खबरता तारे रेडियो तरंग दक्याली कार्यक्रम से नोर्वे तारी खुशी माया दिबालो
1: चादलो यह खुशी माया तुमसो कार्यक्रम से नोर्वे तारी तेवमो थुमई थोकोंगी सामुदायिक रेडियो मर्संगी 95 मेगाहर्ज दक्या प्रत्यक्ष प्रसारण रे जोड़ दी मो जो कार्यक्रम दक्यांगी जी थुमई सेनोर रोई थी वा तामई जो कार्यक्रम सेनोर पे ता दक्या प्रसारण लसी मो तिनी फेरी पुना केमेना माजरी नया थुईना सेनोर पे ता पोईमरी केमे माजरी उपस्थित तई मो तिनी बिहा थु सरी त तमिसैना सेनोर पे ता पोईमरी केमे माजरी नखै मो जो कार्यक्रम लागि केमेजी रेडियो मर्सेंगदी ना जीमेल आईडी mersengdiradio@gmail.com देर फेसबुक मैसेंजर री सेनोर पे ता केमेजी फ्री मरी फीमेल खामो केमे सेनोर पे ता रे जो कार्यक्रम त ग्यानेजी प्रसारण लमी मो सु कार्यक्रम दी विषय मर्सिंगदी नासपालिका तीन लमजुंगरी मुबा हर्सिंग कम्युनिटी क्याम्पसाइट जी प्रायोजन लई म केमे हर्सिंग कम्युनिटी क्याम्पसाइट घुमदिवर यही विषय सुरी केमेजी मनासलु बौद्धा डाक्टर हर्का हिमालचुली लगायत पे ले श्रृंखलामै चोलियो म सुदक्या केमेजी दुधपोखरी समावे पदयात्रा समेत ललखामु चुख्यो राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा कोलमेरी क्रमख्यो हो चुखलोरी केमेजी अर्गानिक चबसेमे चलियो मो लोकल नगैसा लोकल पा पाते पैंगो पोलो सुगडिस्या च्याउ तायो अर्गानिक चलियो मो चुखलोरी केमे तायो थुमे बालो तैमरी पिकनिके बिनी याल खामो हर्सिङ याबै लागि बोलेर जीवैन सुविधा बिनी मो चुरी फ्री वाईफाई बिनी मो चिसो लला तायु क्युइन व्यवस्था बिनी म सूरी परिवारमै घुमदिबार याबै लागि बिनी पारिवारिक वातावरण नै बिनी म नदी विषय त हो प्रविधि त क्या साथ पिसी म प्राविधिक थो दिलोजी तीन विषय मजी सरितैन सैन रुपे ताँदे क्यामै न माजरी प्रस्तुत लसी म तारे मजी क्यामै दिबालो सरितैन सेन त क्या थोबा कथा विषय म